लेता था, क्यों तूने ऐसा किया। यकीनन जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया और उसी हालत में मर गए, यानी वो कुफ्र की हालत में मर गए, इन पर अल्लाह की, फरिश्तों की और तमाम इंसानों की लानत है। खालिदीन फीहा, हमेशा इसी लानत में रहेंगे। क्यों? इनका जुर्म अपने असर अपने तक महदूद नहीं था, इन्होंने तो लोगों की आखिरत तबाह कर दी, इन्होंने तो अपने मुरीदों की आखिरतें तबाह कर दी, इन्होंने दीन गलत बयान किया, ये तो अल्लाह की लानत से निकलेंगे ही कभी नहीं। और अल्लाह की लानत का मतलब क्या अरबी में? रहमत से दूर, यानी अल्लाह की रहमत में नहीं आएगा कभी। खालिदीन फीहा, हमेशा रहेंगे। ला युखफ्फ अनहुमुल अज़ाब, इन पर से अजाब में कमी भी नहीं की जाएगी, हटाना तो दूर की बात है। युखफ्फ तखफीफ, हल्का करना, कंसेशन करना। आप ईरान जाएं तो वहां पर ना जब कीमत कम करानी हो तो कहते हैं आगा तखफीफ, तखफीफ यानी थोड़ा सा कम कर, हल्का कर, बहुत ज्यादा कीमत है। ला युखफ्फ, कोई कंसेशन नहीं होगी उनके अजाब में, कोई कमी नहीं होगी। ला युखफ्फ अनहुमुल अज़ाब वला हुम युन्दरून, और ना ही उनको मोहलत दी जाएगी, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, मुसलसल मुसलसल, बीच में नहीं कहेंगे फरिश्ते के शॉर्ट ब्रेक के बाद मिलते हैं, नहीं, कोई ब्रेक नहीं है, लगे रहो इस अजाब में, ना कोई कमी होगी ना कोई ब्रेक होगी। खालिदीन फीहा ला युखफ, ये किन का अजाब है? जिन्होंने दीन में खराबी की, जिन्होंने दीन में तहरीफ करके मुआशरे में बताया, इतना बड़ा जुर्म है। अल्लाह का ये लबो लहजा देखिए खुदावंद आलम कैसे बात करता है, अलबत्ता जिसको तौबा की तौफीक मिल जाए और वो तौबा का जो तरीका अल्लाह ने बताया। वइलाहुकुम इलाहुन वाहिद, इसमें इशारा है कि ये जो इन्होंने गुमराही की थी लोगों को शिर्क की तरफ ले गए थे, और तुम्हारा माबूद तो एक है, शिर्क ना करो। ला इलाहा इल्लाहुर रहमानुर रहीम, कोई माबूद नहीं उसके अलावा, और वो आम रहमतों वाला भी है और ख़ास रहमतों वाला भी, रहमान भी है रहीम भी। आयत नंबर 164, ये आयत जो है इसमें अल्लाह ने चंद चीज़ों के नाम लिए हैं और फरमाया है कि अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। हर वो चीज़ जिसका नाम लिया गया है अगर इसका हक अदा करना हो, इसको इसमें गौर करने का, अल्लाह कह रहे हैं इनमें निशानियाँ, तो निशानियाँ जाहिर है जो जितना गहराई में उतरेगा उतनी निशानियों का पता चलेगा। कोई कोई खुदाई कर रहा हो उसे एक मोती मिल जाए और खुदाई करे और जितना गहराई में जाएगा उतने ज़्यादा उसको खजाने मिलेंगे। अल्लाह ये कहना चाहता है क्या? वो हमने नहीं किया, मुसलमानों ने, दूसरों ने कर लिया। इन नफी खल्क समावात वल अर्द, यकीनन आसमानों और ज़मीन की खिलकत में, इन्हें कैसे खल्क किया गया, क्या चीज़ें हैं ये, वख्तिलाफिल लैल वन नहार, और रात और दिन के इख्तलाफ में, इख्तलाफ का असल माना होता है एक एक के बाद दूसरा आए, एक के बाद दूसरा आए, और एक राय के ऊपर दूसरी राय आए, इसको कहते हैं इख्तलाफ, राय का इख्तलाफ, यानी एक राय नहीं है, एक आई है एक और आ गई, पीछे पीछे एक और आ गई, इसे इसलिए इख्तलाफ कहते हैं। और रात और दिन का इख्तलाफ, अल्लाह ने जो इख्तलाफ भी बताया उसमें भी रात और दिन का इत्तफाक है। अब देखें इख्तलाफ में इख्तलाफ है, अपना अपना काम कर रहे हैं, रात का वो काम नहीं है जो दिन का काम है, ये वाला इख्तलाफ बहुत अच्छा है, ये तो निज़ाम चलाता है। इफ्तराक वाला इख्तलाफ कि दिन कहे रुक जाए ब्रेक मार ले, रात से कहे नहीं मैं जाता कर लो जो करना, जो उसका टाइम नहीं है उसका मुतालबा कर दे, कहे मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए, ये खराबी होती है इंसानों। अल्लाह वख्तलाफ लैल व नहार, रात और दिन के एक दूसरे के पीछे पीछे आने जाने में, वल फुल किल्लती तजरी फिल बहर, ये मैं फिर आज कर दूँ, इख्तलाफ की बात आई है तो, मसलन एक इदारा है दूसरा इदारा है, एक जमात है दूसरी, कोई जिम्मेदारी लिए वो कर रहे हैं, खुदा की जिम्मेदारी, कोई दीन का कोई काम कर रहे हैं, इस पर कोई मजम्मत नहीं है कि अलग अलग क्यों, उस पर मजम्मत है जब एनर्जी एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर। अगर तो इख्तलाफ फस्तबिकुल खैरात, आगे बढ़ने में नेकियों

तबर्रा करेंगे, ठीक है ना। ये जो अल्लाह तबर्रा बता रहा है वो भी दे, इज़ तबर्रा अल्लज़ीन तुबिउ, जब लीडर जिनको फॉलो किया जाता था वो तबर्रा करेंगे उन पर जो उनको फॉलो करते थे। होगा क्या कि जब देखेंगे जो हमने काम किया हुआ था ये तो गलत था, हम तो दीन से दूर हो गए थे, तो फौरन उनको ख्याल आएगा जिनसे सुन के हुए थे, जिनकी तकारीर सुना करते थे, जिनकी कुतुब पढ़ा करते थे, जिनको दाद दिया करते थे, उनकी तरफ भागेंगे कि भाई तुमने तो हमें कहा था कि हम तो यूं करके जन्नत में जाएंगे, हमारे साथ क्या हो रहा है। वो तबर्रा करेंगे, ठीक है, वो वाला तबर्रा बड़ा खतरनाक होगा। और तबर्रा क्या कहेंगे, तुम्हारा हमारे साथ क्या, भाग भागो यहां से, तुम्हारा हमारे साथ क्या ताल्लुक। तबर्रा का अरबी का लफ्ज है, इसका मतलब है बरात का मतलब है ला ताल्लुक, कोई ताल्लुक नहीं, जाओ हमें अपनी पड़ी हुई है, तुम्हारा क्या करें, हम खुद अजाब में मुबतला है, तुम्हारा क्या करेंगे। इज तबर्रा अल्लज़ीन तुबिउ, जब रहनुमा अपने पैरोकारों से इजहार बरात करेंगे, व रअउल अज़ाब, और अज़ाब को देख लेंगे, व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, और उस दिन इनके ताल्लुकात कट के रह जाएंगे। इधर तो कहते हैं कि लड़ाइयां करते हैं, जिसको लीडर बनाया उसको आगे लाने के लिए लड़ाई करते हैं, मुखालफतें करते हैं, जंगे करते हैं, प्रोपेगेंडे करते हैं, उस दिन लीडर कहेगा भागो यहां से, सारे ताल्लुक कट जाएंगे, वो ताल्लुक रहेगा जो खुदा की रजा में बना था, खुदा की इताअत में बना था, वरना सब ताल्लुक कट जाएंगे, बाप बेटे, माँ बेटे, इनका ताल्लुक कट जाएगा, अल्लाह बताता है। तो फिर क्या होगा, वकाल अल्लज़ीन तबउ, उस दिन वो लोग जो फॉलो करते थे, जब देखेंगे जिनको फॉलो करते थे वो तो हमसे कह रहे हैं भागो यहां से, कोई ताल्लुक नहीं तुम्हारा हमारे साथ, तो अब ये देखकर ये फॉलोअर्स, ये पैरोकार, ये मुरीद, इनके मुंह से क्या जुमला निकलेगा, अल्लाह उसकी खबर दे रहे, वकाल अल्लज़ीन तबउ, और जो लोग पैरोकार थे वो कहेंगे लौ अन्न लना करतन, काश एक मर्तबा वापसी हो जाती हमारी दुनिया में, फनतबर्रअ मिन्हुम कमा तबर्रअ मिन्ना, तो हम दुनिया में जाते हम इसी तरह इनसे ला ताल्लुकी का इजहार करते जिस तरह आज ये हमारे साथ कर रहे हैं। यानी क्या, अगर कहते हैं कि हाँ भाई टाइम आ गया, इस दफा क्या प्रोग्राम है, हमें पढ़ा रहे हो कि नहीं पढ़ा रहे, अगर निकल जा से नहीं पढ़ाएंगे, तो जैसे क्यामत के दिन ये हमें कह रहे हैं भागो यहां से, कोई ताल्लुक नहीं है, हम भी कहते हैं नहीं बुलाएंगे तुझे, जा भाग दे यहां से, क्योंकि तू गुमराह करने वाला। तशखीस किसको होगी, जो उस रास्ते पे चले जो अहले बैत ने बताया, जो अल्लाह ने बताया, अल्लाह के रसूल ने बताया, और वो कुरान अहले बैत, कुरान अहले बैत, कुरान अहले बैत, सुनी सुनाई और अहले बैत नहीं कहा, मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक सुनी सुनाई और एक अहले बैत, ये नहीं कहा अल्लाह ने, मैं अपने बाद दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक शेर और शायरी और एक अहले बैत, नहीं कहा अल्लाह ने, एक कुरान और एक, किधर है कुरान, एक कुरान और एक अहले बैत। उस तबर्रे से बचने के लिए और उन हसरतों से बचने के लिए, उस दिन जब ताल्लुक कटेंगे उससे बचने के लिए आज बंदा सही रास्ते का इंतखाब करे। और जो पैरोकार थे वो कहेंगे काश हमें एक बार दुनिया में वापस जाने का मौका मिल जाता तो हम भी इनसे इसी तरह इजहार बरात करते जिस तरह ये हमारे साथ कर रहे हैं। लेकिन होगा क्या, कज़ालिका युरीहिमुल्लाहु अमालहुम हसरातिन अलैहिम, इस तरह अल्लाह उनके आमाल को हसरत बनाकर उन्हें दिखाएगा, बस सिर्फ हसरत कर सकेंगे, वापसी की इजाजत किसी को, वापस आके इस्लाह की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी, हसरत करेंगे, देख देख कर इनको गुस्सा चढ़ेगा जिनको दुनिया में फॉलो किया था, देख देख कर गुस्सा चढ़ेगा। और कुरान ने और जगहों पे मुख्तलिफ अल्फाज बताए हैं कि ऐ अल्लाह इनको दुगना अजाब दे और इन पर दुगनी लानत कर, बड़ी लानत कर, इनकी वजह से हमारा बेड़ा गर्क हुआ, इन पर डबल अजाब कर, जो दुनिया में पीछे पीछे चल रहे थे ये कहेंगे। जब इकट्ठे होंगे दोजख में तो जो फॉलोअर्स थे वो लीडर को देखेंगे, कहेंगे तुझ पर खुदा की लानत हो, तूने हमें यहां पहुंचा दिया। वो कहेगा मुझ पर नहीं, तुम पर खुदा की लानत हो, तुम भी गंदे थे, तुम्हारा भी दिल करता था शॉर्टकट्स निकालने का।

अगर तुम हक की तलाश में होते तो तुम्हारे पास भी हक मौजूद था, लेकिन तुम भी अल्लाह की इताअत नहीं करना चाहते थे, अल्लाह की नाफरमानी की तरफ मायल थे, तभी तुम्हें हमें लीडर बनाते थे। और ये लीडर, दीनी लीडर हो, कोई लीडर हो, याद रखिएगा सब शामिल है इसमें, सब शामिल है। जब इंसान बाज़ औकात, सुन ले, बाज़ औकात दो रास्ते हैं, दोनों हराम हैं, ठीक है ना, बाज़ औकात दो रास्ते हैं, दोनों हराम हैं, तीसरा रास्ता नहीं है, तो वहाँ पर शरीयत ने बताया जो कम हराम है, नापसंदीदगी के साथ, और कोई रास्ता नहीं, वो कम हराम इंसान मसलन करेगा। लेकिन दिल से मोहब्बतें करना और प्रोपेगेंडे करना, गलत लोगों को लीडर बनाकर, ये भी क्यामत के दिन इस तबर्रे में एक दूसरे के साथ शामिल होंगे। जो आज नारे मारते हैं फलाने को होना चाहिए, फलाने को होना चाहिए, उस दिन कहेंगे फलाने पे लानत, फलाने पे लानत, ठीक है ना, एक लानते करेंगे इनको, आज लीडर बनाया खुदा की नाफरमानी में दुनियावी मफादात की खातिर। वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, और ये आग से निकलने वाले ही नहीं, आग से निकल ही नहीं सकेंगे। एक मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, याद रखिए, थोड़े से अरसे में रसूलुल्लाह, उसमें से भी जो ज्यादा अरसा है वो मुसीबतों का है, 40 साल में ऐलान होता है, कुछ लोग ईमान लाना शुरू करते हैं और उनको मारे पड़ते हैं, खुद रसूलुल्लाह को शदीद तरीन अजियतें हो रही, ताने दिए जा रहे हैं, गरीब लोग जो रसूलुल्लाह के साथ हैं उनको उनके मालिक आका मारते हैं, अजियतें देते हैं, तकलीफें देते हैं, ये तकलीफें बर्दाश्त करते रहते हैं, करते रहते हैं, और लोग बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, आखिरकार गलबा पा जाते हैं। ये गलबा क्यों पाया और अल्लाह की गैबी इमदाद भी इनके साथ क्यों आई? इसलिए कि इनकी जिंदगियों का रुख क्या था, जो रसूल कह रहा है वो करना है। गलतियां भी करते थे, और जहां गलतियां की हैं, खराबियां की हैं, अल्लाह तकल्लुफ करता ही नहीं, वो तो फरमाता है हमारा रसूल भी करता तो हम फिर ना छोड़ते, तकल्लुफ ही नहीं। जहां अल्लाह के रसूल के असहाब ने गलतियां की, खराबियां की, अल्लाह ने डांटा भी बहुत शदीद तरीन अल्फाज में, और अल्लाह ने तारीफ भी बहुत की। कुरान में सहाबा की तारीफ भी बहुत ज्यादा, जो सारा कुरान पढ़ता है उसको पता है, लेकिन शियों सुनियों ने तकसीम कर ली। अल्लाह कुरान में फरमाता है फतकत्तउ अमरहुम बैनहुम ज़ुबुरन, इन्होंने जो अम्र इनको दिया गया था दीन, उसको काट काट के अपनी पसंद का पीस लेकर रख लिया, दूसरा उधर देखते भी नहीं। सब आयात पढ़नी चाहिए, अगर मजम्मत वाली पढ़नी है तो फिर जो तारीफ वाली है वो भी पढ़ें, मर्जी ना करें, अल्लाह की मर्जी पर चले जो खुदा ने चाहा, तो सीधा मोतदिल सिरात मुस्तकीम रास्ता होगा। लेकिन अगर कहेंगे या अल्लाह ये वाली बातें हमें अच्छी नहीं लगती, चलो भाई अगरचे कुरान में है हमें अच्छी नहीं लगती, ये वाली बड़ी अच्छी है, ये हम रख लेते हैं, इनकी हम तस्बीह पढ़ेंगे, इनको हम दीवार पर लगाएंगे, इन पर हम सारा कुछ करेंगे, लेकिन ये वाली नहीं अच्छी लगती, ये अल्लाह कहता है कि ये हक्कन काफिर है, जो कहते हैं कुछ ले लेते हैं कुछ नहीं लेते, ये हक उलाइकहुमुल काफिरून हक्कन आगे आने वाला। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, मुसलमानों की रसूलुल्लाह के साथ कमिटमेंट और इताअत की वजह से गलबा हुआ था इस्लाम का। जो अल्लाह कहता है अपनी जानों और माल से अल्लाह के दीन के लिए काम करो, ये काम हुआ था तो गलबा हुआ था, ऐसा नहीं कि अल्लाह के रसूल ने आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंकी और मक्का फतह हो गया, और कुल औज़ु बिरब, जैसे ही दुश्मन का लश्कर आ रहा होता था अल्लाह के रसूल कुल शरीफ पढ़ के फूंकते थे तो वो तबाह बर्बाद हो जाते थे, नहीं हुआ था ऐसा। काम चोरों का कुल कुल कुल पढ़ना भी कोई असर नहीं रखता, जो अल्लाह की तरफ से जिम्मेदारी दी गई है कि ये करो, अगर तुम खुदा की मदद करोगे तो खुदा तुम्हारी मदद करेगा, ये कुछ नहीं करता, कहता है कुल औज़ु बिरब्बिन, अल्लाह तू बचा मुझे, इसके कुल में भी असर नहीं।

ये समझता है ये कुरान नहीं पढ़ रहा, जादू छू मंत्र पढ़ रहा है कि कुछ हो जाएगा। उसमें तो है ही सारा प्रैक्टिकल। अल्लाह के दुश्मनों के लिए तैयारी करो। क्या तैयारी करो? सारे बैठ के कुल वाला पढ़ना शुरू कर दो? नहीं, तलवारें तेज करो, नेजे तेज करो, घोड़े तैयार करो, मैदानों में निकलो। और अल्लाह की तो टोन देखे, सूरह अनफाल में कहता है मैदान, ऐन मैदान में जंग बदर में, जैसे अल्लाह खुद कमांड कर रहा है। कमांडर इन चीफ कौन है? खुद अल्लाह। क्या फरमा रहा है? डायरेक्ट कमांड्स। आज तुम में से जो पीछे हटा उसको सीधा जहन्नम में फेंक दो। आज जिसने मैदान से पुश दिखाई तो जान लेकर सीधा मुंह जहन्नम की तरफ कर दूंगा उसको। मगर यह कि जंगी चाल के तौर पर या मसलन पैंतरा बदलने के लिए या इसलिए थोड़ा आगे पीछे हो, जो भागने के लिए पुश्त करेगा उसका मुंह सीधा जहन्नम की तरफ। कौन? जो सबसे पहले मुसलमान है। क्यों? कि मैदान में तो फैसले होते हैं, मैदान में तो फैसले होते हैं। मैदान में ना निकलो, तस्बीहां तोड़ते रहो घर बैठ के। तस्बीहां तोड़ने से नहीं होता कुछ, तस्बीहां तोड़ने से कुछ भी नहीं होता। क्योंकि जो तस्बीह तोड़ रहा है, अमल नहीं कर रहा, वो उस अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है। उससे कह रहे जो अल्लाह, या अल्लाह जो तूने कहा है ना वो नहीं करूंगा, जो मैं कह रहा हूं ना वो कर। असल में ये कह रहा हूं, अल्लाह की नाफरमानी करने से, विर्द वजीफे करने से कुछ भी नहीं होता। मैंने जुम्मे के खुतबे में आपको रिवायत सुनाई थी, अल्लाह दुआ कबूल नहीं करता जो घर बैठा रहे कहे या अल्लाह मुझे रिस्क दे। उसे कहा जाता है तुझे मैंने बताया, बाहर निकल और मेहनत कर। अल्लाह उसकी दुआ कबूल नहीं करता, सारी उम्र टकरे मारता रहे घर में, मुसल्ले फाड़ दे, जा नमाजें फाड़ दे, सजदे कर करके नहीं सुनो। क्योंकि उसका रास्ता मैदान में निकलना है। ये बात मुसलमानों को स्टोरी टेलर्स ने भुला दी है। फिक्शंस, ख्वाबों और इस किस्म की बातों पर और जंत्रियों पर, मंत्रियों पर लगा देने वालों ने भुला दिया मुसलमानों को मैदान अमल में रहना। अल्लाह कहते हैं अकल इस्तेमाल करो, ये कहता नहीं मैं इस्तखारा करूंगा। देख रहा है बेटी के लिए, अच्छा लड़का है, मुतदयन है, मसलन कमाता भी है, अच्छा है, इस्तखारा करो। किसने तुम्हें कहा इस्तखारा करो? देखा कभी रसूलुल्लाह इस्तखारा करते थे? क्या जवाब देंगे? वो तो इल्मे गैब जानते थे। सुभान अल्लाह, उन वो उस्वाए हसना है, हम इल्मे गैब जानते हैं। अल्लाह के नबी अपने फैसलों के बारे में कहता था मत समझना कि मैं कोई गैब से फैसले करता हूं, मैं तुमसे सबूत और कसमें तुम्हारी उसी के मुताबिक फैसले करता हूं। अगर कोई मुझसे गलत फैसला करा के अपने किसी भाई का हक ले ले, उसने जहन्नम का टुकड़ा लिया अपने लिए। रसूलुल्लाह ने उस्वा बनना था बशरियत के लिए, मुसलमानों के लिए, हमारे लिए। आप देखें जनाब, इस्तखारे कर रहे हो रसूलुल्लाह, इस्तखारे नहीं करते थे, अमल करते थे, मशवरा करते थे असहाब को बुलाकर। हाँ भाई जंग आ गई है, इस्तखारा करो, मदीने में रहना है या बाहर जाके जंग लड़नी, इस्तखारा करो। देखा आपने कभी बड़ी खतरनाक इस्तखारा हुआ वहां पर? बुलाया। कुरान ने भी नहीं कहा, कुरान ने अलग रसूल से क्या कहा? शाविर हम फिल अमर, अपने असहाब को बुलाइए, मशवरा कीजिए, कहा इस्तखारा करो या रसूलल्लाह। नहीं, इतना बड़ा मसला है, इस्तखारा नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? मशवरा कर। उसके बाद मशवरे से जो बात हुई, रसूलुल्लाह का जो मशवरा था रसूलुल्लाह ने उस पर अमल नहीं किया, क्योंकि ज्यादा लोगों की जो राय थी वो रसूलुल्लाह के खिलाफ थी। रसूलुल्लाह चाह रहे थे गज़वा उहद में मदीने में रहें और अंदर रहकर दिफा किया जाए, लेकिन जो जज्बा शहादत से सरशार थे वो चाहते थे कि मैदान में लड़े जाकर। अल्लाह के रसूल ने उनकी बात मान ली, ठीक है। ये उनके लिए कोई ये ना कहे कि इल्मे गैब से रसूल पाक ने सही वाली वो कर ली, वो इस्तखारा ही था ना, अपनी बात से पीछे हट गए। और जो दूसरी राय वाले थे वो ज्यादा थे, उनकी बात मान ली। ये अल्लाह ने ऐसे ही नहीं कहा ऊपर से दिखाने के लिए कि इनसे मशवरा कीजिए, प्रैक्टिकली हकीकत में साबित किया कि अगर उनका मशवरा मान भी लेते हैं रसूल अल्लाह। शरीयत में नहीं रद्द बदल होता मशवरे से, कि मसलन सारे मिल के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि यार अभी ज़्यादा टाइम, मसरूफियात ज़्यादा हो गई हैं, तो तीन नमाजें कर लेते हैं, ठीक है ना, फजर की भी रहने दें, ज़्यादा काम ख़राब हो जाता है उसमें, दोपहर को भी काफ़ी ज़्यादा गाहक होते हैं, दुकान पर आया नहीं जाता, शाम को पढ़ लेंगे, दो नमाजें कर लेते हैं मशवरे से। चलो जी, मशवरे में अक्सरियत राय से फैसला हो गया, नमाजें दो, ये नहीं मशवरा होता। एक काम है जो करना है, किस तरह करना है?